0: करियर की बागडोर ABCL संभाल रहे हैं, उनकी बात से वे जाने। हम तो इतना ही बताएंगे कि फिलहाल नंबर 23 पर हैं ABCL के नुमाइंदगी। एबी बेबी पिछले बार जो नंबर 20 पर था, इस बार नंबर 23 पर, यानी तीन घर नीचे उतरा है। कभी कभी दिल में ये ख्याल आते हैं,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के साथ

0: विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जयपुर केंद्र है।
1: दोस्तों, आज हमारा हौसला दोगुना है कि आज हम अपने प्रोग्राम की गोल्डन जुबली मनाने के बाद बढ़ रहे हैं।

0: অসামান্য সাফল্যের পর
1: শ্রীকান্ত মোহতার দ্বিতীয় উপহার
0: সখী তুমি কার,
1: বহু সুপারহিট বাংলা ছবির সফল পরিচালক স্বপন সাহা। শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস নিয়েছেন যে ছবির প্রযোজনার পরিবেশনার ভার
2: এই সপ্তাহকে দাবি করে। গুজরাট মে কংগ্রেস বিধায়ক বললেন, মহা গুজরাত জনতা পার্টি কো বিনা শর্ত সমর্থন দেনে কা ফেসলা কিয়া হ্যায়। अहमदाबाद में आज तीसरे पहर विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया। पार्टी प्रमुख श्री शक्ति सिंह गोहिल ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता को बताया कि वे अपने पार्टी के फैसले की सूचना राज्यपाल को दे चुके हैं।
3: हरिवेला फोंटे एंड दिस रंजन प्रसाद द वर्ड्स फिट इन वेरी वेल आउट हियर। हरिवेला फोंटे द सॉन्ग ही सेड राउंड द वे विद द नाइट से के विद द बैकग्राउंड ऑफ द म्यूजिक द वर्ड्स डिडंट फिट इन मोर प्रॉपर्ली बट दिस वन द वर्ड्स डस पथे प्रांत इशू का
4: विद यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दिस राइट।
3: आइडेंटिफिकेशन इज देयर नो डाउट बट द सॉन्ग इज गुड द वर्ड्स फिट इन मोर दैट्स व्हाट आई वांट टू से रियली।
4: थैंक यू वेरी मच।
5: जरा मुहूर्त निकलवा लेते हैं।
4: क्या मतलब?
5: फिर मतलब
4: और ये है इस हफ्ते का सत्ता।

0: अब बोलो
1: क्या लोग अब वादे निभाते नहीं?
0: हाँ, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का यहाँ नहीं है।
1: वाह मिस्टर इंडिया, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे।
0: मैं तो जानी जमाना राग सुना रहा था।
1: तो अब अपना राग भी सुना दो। हाँ, हमें पता तो चले आपके दिल में क्या है।
0: अजी, हमारे दिल में तो तूफान और अरमान की जुगलबंदी चलती रहती है। जरा नजदीक आओ और दिल पे कान लगाओ।
2: यही है इस हफ्ते का छक्का।

गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेल गाड़ी रेल गाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक,